0: कर देवे सर।
1: अरे सर
0: जीरो सिक्स।
1: हाँ मैं पूछ
0: सर
2: My 19 coffee call history 411 411 for a city involving a drink.
1: Coffee.